0: Fennec.
1: पूछिए वर, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने अजातशत्रु का पीछा किया था गंगा किनारे तक, और आनंदोत्सव भी जलते हुए अजातशत्रु से मेरे प्राण बचाए।
2: अच्छा, यहाँ आओ वीर सैनिक, हमारे पास बैठो।
3: सैनिक, जहाँ शस्त्र निषेध है

झूला चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबान
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम।

चंदन झूला चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चमचमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।